0: Hide and Seek, Luka Chupi. Kartik Aaryan ki film, Akhil and Dhwani Bhanushali on the vocals, Duniya. इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज मंडे द 5th ऑफ अक्टूबर की सुबह शबनम साही के साथ. कल मैसेज हियर फ्रॉम दीपक हु सेज लिसनिंग टू योर शो लाउड एंड क्लियर इन नैरोबी इन केन्या. ग्रीटिंग्स शबनम जी, ओवर हियर वी से हकुना मटाटा. थैंक यू सो मच फॉर दैट. माया इन वॉटफर्ड, वेलकम टू द शो. प्रीत इन कॉलनब्रुक, थैंक यू सो मच फॉर दैट. मोमना असलम एंड सहर, थैंक यू. सोफी इन स्कॉटलैंड, हाउ आर यू माई फ्रेंड. मोहिनी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. सनराइज रेडियो पर इस घंटे का ये था लिसनर्स चॉइस.
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी.
2: हेलो यूके वालों, बिग बॉस इज बैक और इस बार घर वालों को मिलेगा एक नहीं टू चांस. बिग बॉस ओनली ऑन कलर्स.
3: वॉच बिग बॉस 20 टुनाइट एट 9:30 PM ओनली ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार.
0: The hit of the hour with Jaimin Foods. Enjoy their lip-smacking range of puff bites in mast masala, lemon chili chataka, Mexican jalapeno, and so much more. Jaimin Foods, the ethnic taste of India.

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Taken from the soundtrack of Sathya. Some songs do not age. This is one of them. KK and Shan. Many, many others on the vocals. Oh, Hamdam, Suniyore. इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज मंडे की सुबह 5th अक्टूबर की सुबह शबनम साही के साथ मेरा और आपके साथ मंडे टू फ्राइडे 9 से 12 के बीच 020-881-38-40 is the number to call if you wish to win tickets of course no pressure but not just yet thank you so much Sunrise Radio पर इस घंटे का ये था Listener's Choice.
1: Listener's Choice brought to you by Colors TV.
2: Hello UK वालों, Big Boss is back और इस बार घर वालों को मिलेगा एक नहीं two chance. Big Boss only on Colors.
3: Watch Big Boss 20 tonight at 9:30 PM only on Colors TV and Jio Hotstar.
0: The hit of the hour with Jaimin Foods. Make snack time even crunchier with Jaimin Grills. Lemon chili pillow, masala wheels, peri peri peri and so much more. Jaimin Foods, the ethnic taste of India. Neeti Mohan, that version of Ishq Nibhavande. Chand Mera Dil is the film. Ananya Pandey and... I've forgotten his name now. जहां भी आप सुन रहे हैं अगर तो आप उनका नाम जानते हैं व्हाट्सएप कीजिए ना गुड मॉर्निंग